0: सस्तो टिकाउ अनि आकर्षक यूपीवीसी झ्याल ढोकाका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। क्षमा देवी बिल्डिङ मटेरियल्स प्राइभेट लिमिटेड, मुख्य कार्यालय कौशलटार भक्तपुर, शाखा कार्यालय कलमकी ढुङ्गे अड्डा पिपल बुटचोक काठमाडौँ।
1: पावर ब्रॉडकास्टिंग, कीप लिसनिंग।

0: सस्तो, टिकाउ अनि आकर्षक यूपीवीसी झ्याल ढोकाका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। क्षमा देवी बिल्डिङ मटेरियल्स प्राइभेट लिमिटेड, मुख्य कार्यालय कौशलटार भक्तपुर, शाखा कार्यालय कलमकी ढुङ्गे अड्डा पिपल बोर्ड चोक काठमाडौँ।
1: पावर ब्रॉडकास्टिंग, कीप लिसनिंग।

0: सस्तो, टिकाउ अनि आकर्षक यूपीवीसी झ्याल ढोकाका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। क्षमा देवी बिल्डिङ मटेरियल्स प्राइभेट लिमिटेड, मुख्य कार्यालय कौशलटार भक्तपुर, शाखा कार्यालय कलमकी ढुङ्गे अड्डा पिपल बोटचोक काठमाडौँ।
1: पावर ब्रॉडकास्टिंग, कीप लिसनिंग।

0: सृष्टिकर्ता पनि उनै, संहारकर्ता पनि उनै, तिनै लोकका मालिक उनै, कैलाशपति शिवजीलाई कोटि कोटि प्रणाम।
1: बोलिए कैलाशपति।